0: मार मैं पाचो
1: इटी विनो और रेडियो पियोम चुनकेरे वेर क्वारो
0: पियोम चुनकेरे वेर क्वारो
1: पिमार मैं पाचो
0: युआन लंग यू बिरोटा।

0: मार मैं पाचो
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो
2: ताले वो जॉनी वो जॉकी सेल रखो ने वो रखी थी।

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो